0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी दारी फारसी रूसी उज्बेकी हिंदी अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजिक की हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायान विश्लेषण विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते राम जो प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे। के मुख्य खबरें, ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोई रसूलजोदा ने सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने और रचनात्मक क्षेत्रों के विकास पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इदबेक खालदार ने OSCI के अध्यक्ष के विशेष प्रतिनिधि से संवाद को बढ़ावा देने और विश्वास निर्माण को सुदृढ़ करने के मुद्दों पर मुलाकात की। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक व्यावहारिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये और दूसरी खबरें हमारे इस समय में। चालू साल के 18 जून को रूसी सांग के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने और रचनात्मक क्षेत्रों के विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोई रसूलजोदा ने भाग लिया और संबोधन किया। सम्मेलन में सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई, साथ ही साझा ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण, मानवीय संबंधों को मजबूत करने, अंतरराज्यीय संवाद के विस्तार तथा सहयोग के आधुनिक तंत्र विकसित करने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे देशों के साझा मूल्य, साझा इतिहास, पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे की परंपराओं के प्रति आदर जुड़ता है। उन्होंने कहा है कि आज विश्व समुदाय ये अधिक स्पष्ट रूप से समझ रहा है कि संस्कृति और कला केवल आध्यात्मिक जीवन के तत्व नहीं है, बल्कि सतत आर्थिक विकास और सामाजिक एकता के महत्वपूर्ण साधन भी है। इसलिए स्वतंत्रता राज्यों के राष्ट्रमंडल के ढांचे में हमारे सहयोग को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। कहीं रसूलजोदा ने इस बात पर जोर दिया कि ताजिकिस्तान राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण और विकास पर विशेष ध्यान देता है। उन्होंने कहा है कि देश का सांस्कृतिक क्षेत्र वर्तमान में तीव्र विकास के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ताजिकिस्तान इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग का सदैव समर्थन रहा है। देश मैत्रीपूर्ण संबंधों और अच्छे पड़ोसी संबंधों को प्राथमिकता देता है तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए हमेशा तैयार रहता है। अठारह जून को ताजिकिस्तान गणराज्य के उप विदेश मंत्री इदबेक खालदार ने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के वर्तमान अध्यक्षता कार्यालय स्विट्जरलैंड के संवाद को बढ़ावा देने और विश्वास को मजबूत करने संबंधी विशेष प्रतिनिधि सार्ज रूमीन से मुलाकात की। ताजिकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया, साथ ही सीमा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को क्षेत्र में स्थिरता और सतत विकास को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के रूप में विशेष महत्व दिया गया। दोनों पक्षों ने आगे भी सहयोग को मजबूत करने में अपनी रुचि व्यक्त की और पारस्परिक हित वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के विस्तार के लिए अपनी तत्परता जाहिर की। तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में सांघ देशों में शिक्षा विकास की प्रवृत्तियां विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक व्यावहारिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये जानकारी तजिकिस्तान सरकार के अधीन प्राथमिक और माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा समिति ने दी। इस सम्मेलन का आयोजन प्राथमिक और माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा समिति के पहल पर किया गया था। इसमें तजिकिस्तान, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिजिस्तान के शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, शिक्षा क्षेत्र के अधिकारियों तथा व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें शिक्षा प्रणाली का डिजिटलीकरण, शिक्षा प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, प्रतिस्पर्धा, मानव संसाधनों का प्रशिक्षण, शिक्षा और उत्पादन के बीच संबंधों को मजबूत बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सतत शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक और माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ करना शामिल था। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष फरहुद रहीमी ने कहा है कि आज दुनिया भर की शिक्षा प्रणालियां विकास के एक नए चरण से गुजर रही है। प्रौद्योगिकी के तीव्र प्रगति, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, श्रम बाजार में परिवर्तन तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता देशों से ये अपेक्षा करती है कि वे मानव पूंजी के विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान दें। अठारह जून को उजनशेर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रदर्शनी सुख 2026 आयोजित की गई। प्रदर्शनी में सुख प्रांत की 200 से अधिक उत्पादन कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और अपने उत्पादन उपलब्धियों तथा निर्यात क्षमता का परिचय दिया। प्रदर्शनी में मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि, विदेशी देशों के राजदूत, उद्यमी, निवेशक तथा रूस, बेलारूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अन्य देशों के अधिकारी प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। सुख प्रांत के अध्यक्ष रजब अहमदजोदा ने कहा है कि तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महिम अली रहमान के निरंतर समर्थन से उद्योग के विकास, निवेश आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सुख प्रांत में 1300 से अधिक औद्योगिक उद्यम कार्यरत है, जहाँ 225 से अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है तथा औद्योगिक और कृषि उत्पादों के निर्यात की मात्रा हर वर्ष बढ़ रही है। प्रदर्शनी के प्रतिभागियों को सूक्त प्रांत में निवेश के अवसरों, उद्योग और कृषि क्षेत्रों की क्षमता से अवगत कराया गया। मेहमानों ने प्रांत के उद्यमियों में निर्मित उत्पादों को देखा और उनकी गुणवत्ता तथा विविधता की सराहना की। दुशांबे शहर में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, जल विद्युत विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। ये चर्चा तजिकिस्तान की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के जल समस्याओं, जल विद्युत और पारिस्थितिकी संस्थान के निदेशक अमीनजों गुल अहमदजोदा और तजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के दौरान की गई। बैठक में सतही और भूमिगत जल संसाधनों के तर्क संगत उपयोग, जल विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए पर्यावरणीय रूप से उचित उपायों को लागू करने, जल पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा को मजबूत करने के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। अमीनजों गुल अहमदजोदा ने जल विद्युत और पर्यावरण क्षेत्रों में चल रही वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामों तथा आगे के विकास की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने ताजिकिस्तान के जल, ऊर्जा और पारिस्थितिकी क्षेत्रों के सतत विकास के वैज्ञानिक आधार को सुनिश्चित करने में संस्थान के योगदान की सराहना की और भविष्य में सहयोग को और मजबूत करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। और एक विदेश समाचार, ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि एल नीनो के घटना जो देश में अधिक गर्म और शुष्क परिस्थितियों से जुड़ी होती है अब उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में दर्ज की गई है। ये जानकारी एजेंसी काज इंफोर्ट ने रिपोर्ट के हवाले से दी। क्षेत्र के समुद्र के तहत का तापमान एल नीनो के निर्धारित सीमा से ऊपर पहुँच गया है और सभी वायु मंडली संकेतक भी इस घटना के अनुरूप पाए गए हैं। मौसम विज्ञान ब्यूरो ने चेतावनी दी है कि सन 2026 के दूसरे भाग में एल नीनो और अधिक मजबूत हो सकता है तथा ये पिछले 7 दशकों के सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक बन सकता है। ब्यूरो के बयान में कहा गया है कि इस मौसम घटना के तेज होने से अमेरिका में अत्यधिक वर्षा हो सकती है जबकि एशिया में गर्म और शुष्क मौसम की स्थिति बन सकती है। इससे पहले से प्रभावित फसलों पर असर पड़ सकता है और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। प्यारे सुनने वालों, ये थे समय की ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। प्यारे सुनने वालों, हमारे समाचार खत्म होने के बाद एक मधुर संगीत सुनाएंगे और इसके बाद हमारी संवाददाता नुशोफरीन ओलिमोवा समोसा के इतिहास के बारे में आपको जानकारी बताएंगे। हमारे साथ रहें।

0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा, खुद बया हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: याद दिलाते कि आप रेडियो आवाज़ी ताजिक की हिंदी भाग को सुन रहे हैं। रेडियो आवाज़ी ताजिक रोज आठ भाषाओं में अपने कार्यक्रम आपके लिए पेश करता है। संबूसा का दिलचस्प इतिहास, एक ताजिक भोजन जो दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ।

سمبوسہ یا دوسرے شبدوں میں سمسا، سموسا اور سنبوس ایک ایسا بھوجن ہے جس کی جڑیں اتہاس میں جاتی ہے اور ہر کوئی کسی ثبوت سے اسے اس یا اس دیش کا اتپاد مانتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اس پرکار کے بھوجن کا جنم خراسان یا دنیا میں تاجک سبھیاتا کے کیندر میں ہوئی تھی اور اس کا مول روپ سنبوسک ہے अधिकांश वैज्ञानिक इस प्रकार के भोजन का श्रेय फर्स और ताजिक को देते हैं और इसे इस धारणा को भी बल मिलता है कि ये भोजन ताजिकों का है मानव जाति के इतिहास में पहली बार संबोसा का नाम जो आज तक बिना किसी बदलाव के हम तक पहुंचा है हजार साल पहले ताजिक वैज्ञानिक अब्दुल फजल बैहकी द्वारा लिखा गया था इस्माइल गुरगानी एक अन्य प्रसिद्ध ताजिक वैज्ञानिक ने اپنی پستک ذخیرائی خوارزمشاہی میں اس نام سے سمبوسہ کا الیکھ کیا اور سپشت روپ سے انیندرا کے علاج کے لیے سمبوسہ الافین یعنی جڑی بوٹی والے سمبوسہ کھانے کی صلاح دی یعنی آپ انیندرا سے پریشان ہیں تو کوک پتیوں کدو اور پالک سے سمبوسہ بنائیے یہ وہی سمبوسہ ہے جسے آج ہم تاجکستان میں اسی نام سے بولتے ہیں جو ایک ہزار سال سے نہیں بدلا ہے 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सनबूसा को खुरासान से मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया और ये उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक बन गया 13वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसराव देहलवी ने दरबारियों और रईसों के बीच एक लोकप्रिय भोजन के रूप में सनबूसा का उल्लेख किया इसके अलावा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इब्न बतूता ने भारत के अपने सफरनामे में अतः में पिसा हुआ मांस प्याज बादाम अखरोट के साथ तैयार एक छोटा सा व्यंजन सनबूसा का उल्लेख किया विशेषज्ञों के अनुसार सनबूसा शब्द के जरिए आर्या भाषा में है और इसे मूल रूप से संपुत्जा कहा जाता था संपुत्जा एक सैंडविच जैसा भोजन था जिसे मुख्य भोजन के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी समय के साथ सनबूसा शब्द बदलकर सनबूसा या सनबूसोग फिर सनबूसा हो गया आजकल सनबूसा एक प्रसिद्ध भोजन है जो पतले आटे या चपाती कीमा हुआ मांस आलू सब्जियां आदि के साथ तेल में तला हुआ या ओवन में बेक किया जाता है आज सनबूसा

कार के भोजन की उत्पत्ति को इसकी मूल मातृभूमि का श्रेय देता है। सामाजिक नेटवर्क में एक शोध के अनुसार कुछ भारतीय विशेषज्ञ इस शब्द के मूल में संदेह करते हैं। एक विशेषज्ञ ने कहा है, ये आश्चर्य की बात है, हमारा अपना समोसा कभी हमारा था नहीं। सुगंधित भोजन जिसे हम दक्षिण एशिया की मिट्टी से समझते थे, वास्तव में सदियों पहले मध्य एशिया से यहाँ आया था। ये एक ऐसा भोजन है जिसने एक लंबा सफर तय किया है और हर प्रसिद्ध यात्री की तरह रास्ते में अपने पद चिन्ह छोड़ा है। मिस्र से लीबिया तक और मध्य एशिया से भारत तक भरवा त्रिकोण ने विभिन्न

प्यारे श्रोताओं, ताजिक भोजन संबोसा के इतिहास के बारे में हमारे प्रोग्राम को इस समय आपने सुना। अब एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे, हमारे साथ रहिए।

इस पुरस्कार की स्थापना तजकिस्तान के नेतृत्व द्वारा जल और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को दी गई विशेष प्राथमिकता को दर्शाती है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करना है जो जल क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये पुरस्कार जल संबंधी मुद्दों के महत्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का माध्यम है। इस पुरस्कार का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन देना है। वर्तमान समय में जल विज्ञान, हिमनद संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है। जो वैज्ञानिक इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, वे इस पुरस्कार के लिए नामांकित किए जा सकते हैं। ये पहल विज्ञान के विकास, उच्च योग्य विशेषज्ञों के निर्माण और वैज्ञानिक उपलब्धियों के व्यावहारिक उपयोग में सहायता करती है। पुरस्कार का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है। आज जल संरक्षण और इसके प्रभावी उपयोग के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए उन्नत सिंचाई प्रणालियां, जल शुद्धिकरण तकनीकें, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण तथा जल बचत उपकरण जल संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए ऐसे नवाचारी परियोजनाओं और कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाता है। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। जल एक ऐसा संसाधन है जो सीमाओं में बांधा नहीं है। अनेक नदियां और जल स्रोत कई देशों में होकर गुजरते हैं। इसलिए जल संसाधनों का न्याय, संगत और प्रभावी उपयोग देशों के बीच सहयोग की मांग करता है। तजकिस्तान सदी संवाद, सहयोग और जल संसाधनों के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन रहा है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने में योगदान दिया है। पुरस्कार का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरणीय जागरूकता और जल उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आज जल संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा का प्रसार, जन जागरूकता में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान की भावना का विकास अत्यंत आवश्यक है। मीडिया प्रतिनिधि, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणीय संगठन इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इस पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं। ताजिकिस्तान के पास विशाल जल विद्युत क्षमता है। मध्य एशिया के लगभग 7% जल संसाधन ताजिकिस्तान के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। देश में 8000 से अधिक हिमनद है जो मीठे जल का मुख्य स्रोत है, किंतु हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण इन हिमनदों का तीव्र गति से पिघलना चिंता का विषय बन गया है। इससे पेयजल, कृषि और ऊर्जा उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हिमनदों का संरक्षण और अध्ययन ताजिकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ताजिकिस्तान ने वैश्विक जल एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसकी पहल पर वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया। इसके बाद सन 2005-2015 की अवधि को जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशा के रूप में मनाया गया। आगे चलकर सन 2018-2028 के अवधि को सतत विकास के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक घोषित किया गया। इन पहलों ने जल संबंधी मुद्दों के महत्व को विश्व स्तर पर और अधिक बढ़ाया तथा वैश्विक सहयोग के लिए मजबूत आधार तैयार किया। हाल के वर्षों में तजकिस्तानी हिमनद संरक्षण के मुद्दों को भी वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उठाया है। हिमनद मीठे जल के महत्वपूर्ण स्रोत है और उनका संरक्षण भविष्य की पीढ़ी
भारतीयों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तजकिसान की पहल के कारण विश्व समुदाय ने हिमनदों के संरक्षण पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है। राष्ट्रपति का ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को हिमनदों से संबंधित अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ये पुरस्कार केवल वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये तजकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है। इसके माध्यम से देश स्वयं को वैश्विक समस्याओं के समाधान में सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार के रूप में प्रस्तुत करता है। साथ ही ये वैज्ञानिक सहयोग अनुभवों के आदान प्रदान और नई तकनीकों के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। जल के क्षेत्र में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तजकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों के संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। वर्तमान समय में जब विश्व जल संकट की चुनौती का सामना कर रहा है, तब इस प्रकार की पहलें और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पुरस्कार न केवल जल क्षेत्र के विकास में योगदान देता है, बल्कि जल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सतत विकास को भी सुदृढ़ बनाता है। तजकिस्तान इस प्रकार की रचनात्मक पहलों के माध्यम से ये सिद्ध करता है कि जल मानवता के लिए शांति, सहयोग और प्रगति का आधार है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिपानी जो आपने सुना है। इसके बारे एक मधुर गीत सुनाएंगे और उसके बाद बद्रदीन हिलाली के जीवन के बारे में मैं आपको जानकारी प्रस्तुत करूंगी। हमारे रेडियो के साथ रहें।

प्यारे सुनने वालों, आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। अभी हम बद्रुद्दीन हिलाली के जीवनी के बारे में आपको जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ रहे।

कवि वसंत की मनमोहक दृश्यों का आनंद लेता है। वसंत फूलों का मौसम है और प्रेम एक सुगंधित और आनंदित फूल की तरह प्रकट होता है। हिलाली के प्रेम कविताओं में विशुद्ध मानवीय प्रेम का ताप अत्यंत सुंदर और सजीव ढंग से कागज पर अभिव्यक्त हुआ है। बद्रुद्दीन हिलाली के भावु गजलों में प्रेम को एक नया अर्थ मिला है और इस अर्थ में कवि ने उच्च मानवीय और निजी विचारों को भी अभिव्यक्त किया है। हालांकि प्रेम के देश के इस सम्राट की संपूर्ण रचना प्रेम की पिरास से आच्छादित है। हिलाली के अधिकांश कविताएं जिनकी रचना उन्होंने स्वयं 1531 में की थी गजलें हैं। उनकी कविता में लगभग 307 गजलें हैं। 32 रुबाइयां, 8 किता और अन्य लघु गीतात्मक शैलियां शामिल है जिनकी कविताओं की संख्या 2700 तक पहुंचती है। कवि के किताओं और रुबाइयों की विषय विधि है और वे लेखक के दार्शनिक, नैतिक और सामाजिक विचारों को प्रतिबिंबित

0: आवाज़ तैजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ तैजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिक हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायनियां, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीदी रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार बहाग में स्वागत करते हैं और अब मुख्य खबरों से शुरू करें।

0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: याद दिलाते कि आप रेडियो आवाज़ी ताजिक की हिंदी भाग को सुन रहे हैं। रेडियो आवाज़ी ताजिक रोज आठ भाषाओं में अपने कार्यक्रम आपके लिए पेश करता है। संबूसा का दिलचस्प इतिहास, एक ताजिक भोजन जो दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ।

सम्बोसा या दूसरे शब्दों में समसा, समोसा और सोनबोस एक ऐसा भोजन है जिसकी जड़ें इतिहास में जाती है और हर कोई किसी साबुत से इसे इस या उस देश का उत्पाद मानता है। लेकिन सच ये है कि इस प्रकार के भोजन का जन्म खुरासान या दुनिया में ताजिक सभ्यता के केंद्र में हुई थी और इसका मूल रूप सम्बोसा है। अधिकांश वैज्ञानिक इस प्रकार के भोजन का श्रेय फर्स और ताजिक को देते हैं और इसे इस धारणा को भी बल मिलता है कि ये भोजन ताजिकों का है। मानव जाति के इतिहास में पहली बार सम्बोसा का नाम, जो आज तक बिना किसी बदलाव के हम तक पहुंचा है, हजार साल पहले ताजिक वैज्ञानिक अब्दुल फजल बैहकी द्वारा लिखा गया था। इस्माइल गुरगानी, एक अन्य प्रसिद्ध ताजिक वैज्ञानिक, ने अपनी पुस्तक जखीराई खुरज़मशाही में इस नाम से सम्बोसा का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से अनिद्रा के इलाज के लिए सम्बोसाई अलाफिन यानी जड़ी बूटी वाले सम्बोसा खाने की सलाह दी। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं, तो कुक पत्तियों, कद्दू और पालक से सम्बोसा बनाइए। ये वही सम्बोसा है जिसे आज हम ताजिकिस्तान में उसी नाम से बोलते हैं जो 1000 साल से नहीं बदला है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सम्बोसा को खुरासान से मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया और ये उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक बन गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसराव देहलवी ने दरबारियों और रईसों के बीच एक लोकप्रिय भोजन के रूप में सम्बोसा का उल्लेख किया। इसके अलावा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इब्न बतूता ने भारत के अपने सफरनामे में अतः में पिसा हुआ मांस, प्याज, बादाम, अखरोट के साथ तैयार एक छोटा सा व्यंजन सम्बोसा का उल्लेख किया। विशेषज्ञों के अनुसार सम्बोसा शब्द के जड़े आर्या भाषा में है और इसे मूल रूप से सम्पुत्ज़ा कहा जाता था। सम्पुत्ज़ा एक सैंडविच जैसा भोजन था जिसे मुख्य भोजन के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। समय के साथ सम्पुत्ज़ा शब्द बदल कर सम्बोसा या सम्बोसोग फिर सम्बोसा हो गया। आजकल सम्बोसा एक प्रसिद्ध भोजन है जो पतले आटे या चपाती, कीमा हुआ मांस, आलू, सब्जियां आदि के साथ तेल में तला हुआ या ओवन में बेक किया जाता है। आज सम्बोसा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया के कई देशों जैसे मध्य पूर्व, भारत और उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में पकाया और बेचा जाता है। दुनिया के कुछ देशों में सम्बोसा को भारतीय के रूप में जाना जाता है और विभिन्न रूपों में आधुनिक सम्बोसा को भारतीय सम्बोसा माना जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं की राय के अनुसार आधुनिक तकनीकों की प्रगति के साथ इस समस्या से पर्दा उठ गया है और वे स्वयं इस प्रकार के भोजन की उत्पत्ति को इसकी मूल मातृभूमि का श्रेय देते हैं। सामाजिक नेटवर्क में एक शोध के अनुसार कुछ भारतीय विशेषज्ञ इस शब्द के मूल में संदेह करते हैं। एक विशेषज्ञ ने कहा है, ये आश्चर्य की बात है, हमारा अपना समोसा कभी हमारा था नहीं। सुगंधित भोजन जिसे हम दक्षिण एशिया की मिट्टी से समझते थे, वास्तव में सदियों पहले मध्य एशिया से यहाँ आया था। ये एक ऐसा भोजन है जिसने एक लंबा सफर तय किया है और हर प्रसिद्ध यात्री की तरह रास्ते में आपने पद चिन्ह छोड़ा है। मिस्र से लीबिया तक और मध्य एशिया से भारत तक भरवा त्रिकोण ने

प्यारे श्रोताओं, ताजिक भोजन संबोसा के इतिहास के बारे में हमारे प्रोग्राम को इस समय आपने सुना। अब एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे, हमारे साथ रहिए।

इस पुरस्कार की स्थापना तजकिस्तान के नेतरे द्वारा जल और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को दी गई विशेष प्राथमिकता को दर्शाती है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करना है जो जल क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये पुरस्कार जल संबंधी मुद्दों के महत्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का माध्यम है। इस पुरस्कार का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन देना है। वर्तमान समय में जल विज्ञान, हिमनद संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है। जो वैज्ञानिक इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, वे इस पुरस्कार के लिए नामांकित किए जा सकते हैं। ये पहल विज्ञान के विकास, उच्च योग्य विशेषज्ञों के निर्माण और वैज्ञानिक उपलब्धियों के व्यावहारिक उपयोग में सहायता करती है। पुरस्कार का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है। आज जल संरक्षण और इसके प्रभावी उपयोग के लिए आधुनिक तक

निकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए उन्नत सिंचाई प्रणालियां, जल शुद्धिकरण तकनीकें, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण तथा जल बचत उपकरण जल संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए ऐसे नवाचारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाता है। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। जल एक ऐसा संसाधन है जो सीमाओं में बांधा नहीं है। अनेक नदियां और जल स्रोत कई देशों में होकर गुजरते हैं। इसलिए जल संसाधनों का न्याय संगत और प्रभावी उपयोग देशों के बीच सहयोग की मांग करता है। तजिकिस्तान सदी संवाद सहयोग और जल संसाधनों के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन रहा है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने में योगदान दिया है। पुरस्कार का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरणीय जागरूकता और जल उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आज जल संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा का प्रसार, जन जागरूकता में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान की भावना का विकास अत्यंत आवश्यक है। मीडिया प्रतिनिधि, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणीय संगठन इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इस पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं। ताजिकिस्तान के पास विशाल जल विद्युत क्षमता है। मध्य एशिया के लगभग 7% जल संसाधन ताजिकिस्तान के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। देश में 8000 से अधिक हिमनद है जो मीठे जल का मुख्य स्रोत है, किंतु हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण इन हिमनदों का तीव्र गति से पिघलना चिंता का विषय बन गया है। इससे पेयजल, कृषि और ऊर्जा उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव सकता है। इसलिए हिमनदों का संरक्षण और अध्ययन ताजिकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ताजिकिस्तान ने वैश्विक जल एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसकी पहल पर वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया। इसके बाद सन 2005-2015 की अवधि को जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशा के रूप में मनाया गया। आगे चलकर सन 2018-2028 के अवधि को सतत विकास के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक घोषित किया गया। इन पहलों ने जल संबंधी मुद्दों के महत्व को विश्व स्तर पर और अधिक बढ़ाया तथा वैश्विक सहयोग के लिए मजबूत आधार तैयार किया। हाल के वर्षों में ताजिकिस्तानी हिमनद संरक्षण के मुद्दों को भी वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उठाया है। हिमनद मीठे जल के महत्वपूर्ण स्रोत है और उनका संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ताजिकिस्तान की पहल के कारण विश्व समुदाय ने हिमनदों के संरक्षण पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है। राष्ट्रपति का ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को हिमनदों से संबंधित अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ये पुरस्कार केवल वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि ये ताजिकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है। इसके माध्यम से देश स्वयं को वैश्विक समस्याओं के समाधान में सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार के रूप में प्रस्तुत करता है। साथ ही ये वैज्ञानिक सहयोग अनुभवों के आदान प्रदान और नई तकनीकों के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। जल के क्षेत्र में ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ताजिकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों के संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। वर्तमान समय में जब विश्व जल संकट की चुनौती का सामना कर रहा है तब इस प्रकार की पहलें और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पुरस्कार न केवल जल क्षेत्र के विकास में योगदान देता है बल्कि जल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सतत विकास को भी सुदृढ़ बनाता है। ताजिकिस्तान इस प्रकार की रचनात्मक पहलों के माध्यम से ये सिद्ध करता है कि जल मानवता के लिए शांति, सहयोग और प्रगति का आधार है।
پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی جو آپ نے سنا ہے، اس کے بارے ایک مدہور گیت سنائیں گے اور اس کے بعد بدر الدین ہلالی کے جیون کے بارے میں آپ کو جانکاری پرستوت کروں گی ہماری ریڈیو کے ساتھ رہیے۔